わかり。

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Hết à? Yeah, nice.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: कि वर्तमान समय आप बच्चों की विश्व को ये सेवा आवश्यकता है जो चेहरी से नैनों से दो शब्द से हर आत्मा की दुख को खुशी दे दो। आपको देखते ही खुश हो इसलिए खुश ने माँ जेरी या खुश ने माँ मोरत सदा रहे, क्योंकि मन की खुशी सूरत से स्पष्ट दिखाई देती। कितना भी कोई

परिवर्तन कर ले। आज मानना कि खुशी के लिए कितना खर्चा करते हैं, कितने मनोरंजन के नए नए साधन बनाते हैं, वो है अल्पकाल के साधन। और आपकी है सदा काल की सच।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अमृत वेले से लेके जब उठते हो तो परमात्म प्यार में लवलीन होके उठते हो। परमात्म प्यार उठाता है दिनचर्या की आद। परमात्म प्यार होता है, प्यार नहीं होता सकते। प्यार ही आपके समय की कण

Para negliati.

0: आएंगे साथ पिएंगे, साथ सोएंगे और साथ चलेंगे। सोना भी अकेला नहीं है, अकेले सोते हैं तो बुरे स्वप्न व बुरी क्या लात स्वप्न में भी आती। लेकिन बाप का इतना प्यार है जो सदा कहती है मेरे साथ सो, अकेले नहीं सो। तो उठे उठते हो तो भी साथ, सोते हो तो भी साथ, खाते हो तो भी साथ, चलते हो तो भी साथ। अगर दफ्तर में जाते हो, बिजनेस करते हो तो भी बिजनेस का आप ट्रस्टी हो, लेकिन मालिक बाप है। दफ्तर में जाते हो तो आप जानते हो कि हमारा डायरेक्टर पास बाप दादा है, ये निमित्त मात्र उनके डायरेक्शन से काम करते। कभी उदास हो जाते हो तो बाप फ्रेंड बन के बहलाते, फ्रेंड भी बन जाते हैं। कभी प्रेम में रोते हो आंसू तो बाप पूछने के लिए भी आते हैं। और आपके आंसू दिल के डब्बी में मोती समान समा देते। अगर कभी कभी नटखट हो के रोज भी जाते हो, रोजते भी हो बहुत मीठा मीठा, लेकिन बाप रोसे हुए को भी मना आते। कोई बात नहीं बच्चे, आगे बढ़ो, जो कुछ हुआ बीत जाओ, भूल जाओ, बीती सो बीती करो, ऐसे मनाते भी। तो हर दिन चिड़िया किसके साथ है?
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: यूज करने से नेचुरल स्थिति बन जाए।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: हर एक बच्चे को चाहिए इंडिया में रहती है या फॉरेन में रहती है, लेकिन वरदान सभी को एक ही बाप दादा का मिलता है। और वरदान को प्राप्त कर खुश भी होते, लेकिन खुश होते हैं दो प्रकार के बच्चे। एक बच्चे वरदान को देख खुश जरूर होते हैं, लेकिन आगे नंबर वही लेते हैं जो सिर्फ वरदान को देख खुश नहीं होते, वरदान नहीं करते कि ये मेरा वरदान है, लेकिन वरदान को फलीभूत करते, वरदान से लाभ लेकर वरदान का फल निकालते। बीज है लेकिन बीज को फलीभूत नहीं करे, फल नहीं निकाले तो सिर्फ खुशी होती है। वरदान को फल निकालने के लिए जैसे कोई भी बीज होता है, उसका फल निकालने के लिए उनको पानी और धूप चाहिए, तभी फल निकलता। तो यहां भी हर बच्चे को जब वरदान का फल निकालना है, जिससे विस्तार होता जाए, अपने मन में वरदान का फल द्वारा वृद्धि होती जाए, तो यहां भी बाप कहती है कि वरदान का फल निकालने के लिए बार बार वरदान को स्मृति में लाओ। स्मृति स्वरूप के स्थिति में स्थित रहो, बार बार स्मरण नहीं लेकिन स्मृति। ये पानी देना और स्वरूप में स्थित होना, ये धूप लगन, तो ये फलीभूत होने से स्वयं में भी बहुत शक्ति बढ़ती है।

0: फल द्वारा शक्ति का अनुभव करा सकते।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: हर बोल में पवित्रता का वाइब्रेशन समाया हुआ, हर संकल्प में
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप मददगार जरूर है और अंत तक रहेंगे, ये गारंटी है, लेकिन किसके किसके मददगार जो हिम्मत का पहले पांव आगे करते हैं, फिर बाप मदद का दूसरा पांव उठाने में संपूर्ण मदद करते हैं। हिम्मत का पांव उठाओ नहीं और श्रम को बाबा आप कर लो ना बाबा आप कर लो, तो बाप दादा भी कहेगा ठीक है पहले पाँव तो रखो, एक पाँव भी नहीं रखेंगे तो क्या कैसे होगा। इसलिए इस वर्ष में हर समय ये मजबूत है, बाप को कहने के पहले ये चेक करो हिम्मत का पांव बनाया और मदद नहीं मिले ये असंभव है। सिर्फ थोड़ा सा हिम्मत का पांव भरा, इसीलिए गया हुआ है। पहला शब्द क्या आता है, हिम्मत दे बच्चे मदद दे बाप, इसको उल्टा नहीं करो, मदद दे बाप और फिर हिम्मत बचो। मुस्कुराते रहते हैं, वाह मेरे बच्चे लाडले वाह, निश्चय से हिम्मत का पांव जरा भी आगे करेंगे तो बाप पदम को ना मदद के लिए हर एक बच्चे के लिए हर समय तैयार है।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अभी सेवा और स्व दोनों का बैलेंस ऐसा सेवा स्थान बनाओ जो सबके आगे एक एग्जाम्पल हो। जैसे म्यूजियम होते हैं ना, तो सब एड्रेस देते हैं ना, शहर में कहाँ भी जाओ तो एड्रेस देते हैं, यहाँ जाओ यहाँ जाओ। ऐसे जिसको शांति चाहिए, हिम्मत चाहिए, वो मगुत्सा चाहिए, वो आपके एड्रेस में पहुंचे, फैल जावे। अगर शांति का वाइब्रेशन लेना हो तो यहाँ जाओ, अगर हिम्मत भरनी हो तो यहाँ जाओ। ऐसे स्पेशल बनाओ, ठीक है ना। बाकी तो सब म्यूजियम तो जाता, अध्यात्मक म्यूजियम भी है, भाषण भी है, सब कुछ है, लेकिन कोई विशेषता ऐसी स्थान की बनाओ जो भ्रमणों में और पैर में भी ये प्रसिद्ध हो जाए कि ये चाहिए तो यहाँ जाओ। क्योंकि आजकल लोगों को सुनने की आदत तो है लेकिन अनुभव करने की आदत नहीं। तो अगर अनुभव करने जाए तो आपके पास ये प्रसिद्ध हो जाए कि अगर आपको अनुभव करना है तो ये एड्रेस।
2: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: कोई भी कर्म आरंभ करते हो कंट्रोलिंग पावर, रोलिंग पावर वाली आत्माओं साधारण कर्म शुरू हुआ। स्मृति स्वरूप से आरंभ करना, उसमें बहुत फर्क है।

0: जैसे हद के मर्तबे वाले अपना कार्य करते हैं तो कार्य के सीट पर सेटोगे फिर कार्य आरंभ करते हैं। ऐसे अपने मालिक बन के स्वराज अधिकारी इस मालिकपन की अथॉरिटी की चेकिंग को और बढ़ाना है। इसकी निशानी है मालिकपन के अथॉरिटी की निशानी है सदा हर कार्य में होंगी। और रिजल्ट सफल
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सभी का लक्ष्य बाप समान बनने का है। सारे दिन में ये ड्रिल करो, मन की ड्रिल, शरीर की ड्रिल, तो शरीर की तंदुरुस्ती के लिए करते हो करते रहो, क्योंकि आजकल दवाइयों से भी एक्सरसाइज आवश्यक है। वो तो करो और खूब करो, टाइम पर सेवा के टाइम एक्सरसाइज नहीं करते रहना, कि टाइम पर एक्सरसाइज करना अच्छा है, लेकिन साथ साथ मन की एक्सरसाइज

Psst.

हो सकता।

0: बस और अटेंशन चलते फिरते गरम करते बीच बीच में करते जाना तो ये प्रैक्टिस मनसा सेवा करने में भी सहयोग देंगे और पावरफुल योग की स्थिति में भी बहुत मदद मिले।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: जो सदा खुश रहती है वो हाथ उठाओ, सदा खुश खुश रहती है, खुशी तो रहती है ना, खुशी तो है ना, खुशी तो नहीं जाती, खुशी नहीं जानी चाहिए, क्योंकि खुशी परमात्म गिफ्ट है, परमात्म गिफ्ट संभाल के रखनी चाहिए। बात बात में हो गई खुशी क्यों जावे, बात पावरफुल है कि खुशी परमात्म गिफ्ट, तो ये भी कोशिश करो खुशी नहीं जाए। सदा फेस खुश दे मारे, खुश दे मां रह सकती है, खुशी रह सकती है, रह सकती है, कांधे लाओ, रह सकती है, अटेंशन देंगे तो हो जाएंगी ना, हो जाएंगी, हो जाएंगे पीछे वाले, पीछे वाले हो जाएंगे। तो बाप दादा सभी के लिए कह रहे, एक मास के बाद सभी से ये चार्ट मंगाएंगे कि एक ही मास खुश रहा। आज की तारीख याद करना, सभी को कह रही है, सिर्फ फॉरेनर्स को नहीं। एक मास की ट्रायल करो, कोई भी बात आवे दिल में नहीं समाना, समझना बात राइट है रॉन्ग है क्या करना है, लेकिन दिल में नहीं समा, दिल में समा जाती है तभी खुशी जाती। समझने वाला खुश रहेगा और बात को समझ के पूरी करेगा। तो एक मास का पेपर है ये, खुश रहना है, हो सकता है अलबेला बन छोड़ो, हो जाएगा, हो जाएगा, नहीं करना ही है, क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि समय आप ब्रह्मांडों के रोकने से रुका हुआ है। समय को समीप लाने वाले आप, तो तीव्र पुरुषार्थ करो, दृढ़ संकल्प करो, तो हो जाएंगे। रोज ये गीत याद करो, आप घर चलना है।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम। संकल्प

Sad.

0: किस्सा काट में आ जाऊं।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

Scheiße.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Immortal.

Shit.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: ब्यूटी को रायलिटी, पर्सनालिटी, रियलिटी, रायलिटी कहा जाता है। तो अपने रॉयलिटी को याद करो, अनादि रूप में भी आप पाप के साथ अपने देश में विशेष आत्माएं हो, जैसे आकाश में विशेष सितारे चमकते हैं, ऐसे आप अनादि रूप में विशेष सितारा चमकते हो। तो अपना आदिकाल की रॉयलिटी याद करो, फिर सतयुग में जब आते हैं तो देवता रूप रॉयलिटी याद करो। सभी के सिर पर रॉयलिटी का लाइट का ताज, अनादि आदि आपके चित्रों की रॉयलिटी और किसकी नहीं है। नेताओं का, अभिनेताओं का, धर्मात्माओं का चित्र बन विशेष

0: संपन्न करता है, पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, व्यर्त संकल्प भी अपवित्रता है, व्यर्त बोल
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अभी क्या याद रखा, कौन सी बात को अंडरलाइन किया, बेहद का फेरा, आत्माओं को इच्छाओं से बचाओ, बहुत बेचारी दुखी है, बहुत परेशान। रैम दिल बनो, रैम की लहर, बेहद के फैराग, फिरती द्वारा फैलो। अभी सभी पाप के साथ ऊंचे थे, ऊंचे परम धाम में साथ, ये सर्व आत्माओं को रहम की दृष्टि दो, वाइब्रेशन फैलाओ, फैला सकते है ना, तो बस अभी परम धाम में पाप के साथ बैठ जाओ, वहां से ये बेहद के रैम का वायुमंडल

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: శివ రేడియో
1: సత్యం శివం సుందరం సత్యం శివం సుందరం.
2: Got it.

0: सकती है, पापा का भी वरदान है। समझा? अभी इसके पीछे लग जाएंगे ना, रोज चेकिंग करेंगे ना रिजल्ट, संस्कार स्वयं ही ढीला हो जाएगा। और जो बाप दादा चाहते हैं कि संस्कार के सब्जेक्ट में संस्कार चाहते हो वही कार्य में लगे। हो जाएगा, अटेंशन में आए है ना तो हो जाएगा। लेकिन अटेंशन ऐसे नहीं हो जाएगा, लेकिन अटेंशन देना पड़ेगा।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

好き。

想弟弟。Thank you.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम। बांधने वाले ने सिर्फ तरीका आपको सुना दिया कि ऐसे बांधो तो बन जाऊंगा।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: परिवर्तक

Johnny.

повощал. Рад от

Sleep.

0: Bobby.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

या उनको भी संस्कार के टक्कर से चला।

Jimmy Ward.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अगर पापा शब्द नहीं निकलता तो ज्ञान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: जी जी

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ। याद आ रहा है परम धाम, अनादि काल से आपकी झलक फलक न्यारी, जैसे आकाश में देखा होगा सितारे सभी चमकते हैं, सब लाइट है, लेकिन सर्व सितारों में कोई विशेष सितारों की चमक न्यारी और प्यारी। ऐसे ही सर्व आत्माओं के बीच आप आत्माओं की चमक

So.

0: सारे क्लब में ये रूहानी रियलिटी चलती रही है।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

What?

appreciate. Guardian. Yo.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Man.
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: इस वर्ष की ये लास्ट मीटिंग है, लेकिन दूसरे

को कार्य करने, एक तो अपने सेवा स्थान को सत्य

Tu sais ce qu'il y a

विशेष कमजोरी हो। आप तो जानते हो ना अपने कमजोरी को। वो कमजोर

0: चुप भावना से टोकने के रूप से नहीं पूछना। चुप भावना से एक दो की सहयोगी बन, एक दो को आगे बढ़ाने की चुप भावना से।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम,
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: हिम्मत कम तो नहीं होती, हिम्मत कम होती है तो बाप की मदद का भी अनुभव नहीं होता। बाप मदद देता है लेकिन कैच नहीं कर पाते, फायदा नहीं उठा सकते। इसीलिए सदा अपने को देखो, हिम्मत बढ़ाओ। कोई ना कोई ऐसी बुद्धि में रखो जिससे हिम्मत बढ़ती रहे। जितनी हिम्मत बढ़ेगी ना, तो हिम्मत के आगे और बातें आने भी कम हो जाएगी।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: श्रेष्ठ

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम

姐。Man up, gay. Sada, sada.

बच्चों के लिए बाप सदा सर जो कहा गया सो रास है सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन बच्चों के आगे हंसो

सदा विजयी बनना, जहां भगवान साथ है वहां विजयी बनना क्या मुश्किल है।

Jag vet inte. Och skilja.

dead

Yep.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: दुआएं लेते जाओ, दुआएं देते जाओ, संपन्न हो जाएंगे। कोई पत दुआ देवे तो क्या करेंगे, लेके पत दुआ आपको देता है तो आप क्या करेंगे, लेके अगर पत दुआ मानो ले लिया तो आपके अंदर स्वच्छता रही। पत दुआ तो खराब चीज है ना, आपने ले ली अपने अंदर स्वीकार कर ली तो आपका अंदर स्वच्छ तो नहीं रहा ना। अगर शराब पी डिफेक्ट रहा तो परफेक्ट नहीं बन सकते। खराब चीज कोई देवे तो आप ले लेंगे, कोई बहुत सुंदर फल लेकिन आपको खराब हुआ दे देवे, फल तो बढ़िया है फिर ले लेंगे, लेंगे नहीं लेंगे ना कि कहेंगे अच्छा तो है चलो दे दिया। देने वाला भी होता है लेकिन लेने वाला ज्यादा होता है। देने वाला तो अलबेला होता है।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: माया और परमात्म बच्चे दोनों का आपस में कनेक्शन है। माया का काम है आना और आप बच्चों का some

सोचते कि अभी तो टॉयलेट का बोर्ड नहीं लगा, अभी तो समय पर पुरुषार्थ कर रही है, पहुंच जाएंगे तो माया भी समझती है। एक तो आने दिया, दूसरा

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Isso.

0: απανέτελμε φαϊτάκαρο και αμκαπίπι κουσινέκαμε.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: औरों की सेवा की बहुत बहुत बहुत बहुत आवश्यकता है, ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत नासिक समय आना है। ऐसे
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

Adiós.

0: ಸಂತುಷ್ಟಂ ಮಾಡಿನ.
1: Baby, baby.

として。

ಶಕ್ತಿ. Awesome.

Everybody, please.

piace a te. E se...

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: सहज को स्वयं भी मुश्किल बनाते, मुश्किल है नहीं, मुश्किल बनाते। जब बाप कहते हैं जो भी बोझ लगता है वो बोझ बाप को दे दो, देना नहीं आता, बोझ उठाते भी हो फिर थक भी जाते हो, फिर बाप को लेना भी देते हो, क्या करें कैसे करें। अपने ऊपर बोझ उठाते क्यों, बाप ऑफर कर रहा है अपना सब बोझ बाप के हवाले कर, तीसर जन्म बोझ उठाने की आदत पड़ी हुई है ना, तो आदत से मजबूर हो जाते, इसलिए मेहनत करनी पड़ती, कभी सहज कभी मुश्किल। या तो कोई भी कार्य सहज होता है या मुश्किल होता है, कभी सहज कभी मुश्किल क्यों, कोई कारण होगा ना। कारण है आदत से मजबूर हो जाते, और बाप दादा को बच्चों की मेहनत करना ये सबसे बड़ी बात लगती, अच्छी नहीं लगती। मास्टर सर्वशक्तिमान और मुश्किल, टाइटल क्या देते हो अपने को, मुश्किल योगी या सहज योगी, नहीं तो अपना टाइटल चेंज करो, हम सहज योगी नहीं है। कभी सहज योगी है कभी मुश्किल योगी, और योग है क्या, याद करना है ना बस ना, और पावरफुल योग के सामने मुश्किल हो ही नहीं सकता। योग लगन की अग्न है, अग्न कितना भी मुश्किल चीज को भी परिवर्तन कर देती, लोहा भी बोल्ट बन जाता है। ये लखन की विश्व परिवर्तन करेंगे। तो जो विश्व परिवर्तन करता है वो अपने मुश्किल को नहीं मिटा सकता।
4: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: ये फ्रिश्ट।

0: Fiona, ossa me samni, me huijatma. Me shabd bolo, or samni atma rufkula. Me shabd aise nahi bolo.
1: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: मधुबन वाले

0: ऐसे नहीं, दूसरे प्यारे नहीं है, वो प्यारी है लेकिन मधुबन वालों से एक बात का विशेष प्यार।
1: Oh, God.

0: अच्छा बैठ जाओ बैठ
1: जाओ। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा को किसी भी बच्चे की मेहनत की स्थिति अच्छी नहीं लगती। मेरे बच्चे जाओ, जिम्मेवारी बाप को दे दो।

0: yoga. Yes, Sangama yoga. Sabhi yoga mein se mojo ka yoga. Is mojo ke yoga mein bhi moj nahi manayenge.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: प्यारे प्यारे बाप दादा, सबको बिंदी का तिलक दे रहे।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा, ये होमवर्क देते चेता, कि ये तो मास एक बच्चा मन के व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ समय के बचत अभी समय के प्रमाण आप सभी को मनसा शक्ति द्वारा आत्माओं की मनसा सेवा करने का समय होगा। इसके लिए सदा मन के ऊपर अटेंशन रखना जरूरी का हुआ भी है। मन जीत जगत जीत, तो मन मना भव के वायुमंडल में मन के व्यर्थ को संपन्न करना है। कर सकते हैं, करेंगे, वो हाथ उठाओ, बाप दादा इनाम देंगे। अपने रिजल्ट आप देखना। मन खुश तो मन की खुशी बांटेंगे। ये पुरुषार्थ में नंबर सभी आगे से आगे लेने का अटेंशन रखो। व्यर्थ समाप्त संकल्प समय दोनों समाप्त और समर्थ संकल्प समर्थ समय आने वाले समय में वायुमंडल में फैलेंगे।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: जो भी हो जैसे भी हो बाप तो देख खुश होता ही। बाप ने जो वायदा किया है कैसे भी लायक बना के ले जाना। बाबा माया आ गई आ गई। चिल्लाना नहीं अपने को उड़ा देना। माया नीचे रह जाए आप ऊपर उठ जाओ तो माया देखती रहेगी।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अगर कोई भी बच्चे थोड़ा भी नीचे ऊपर होती है, अचल से अलचल में आती है, उसका कारण सिर्फ तीन बातें मुख्य है। वही तीन बातें बिना समस्या या परिस्थिति बन के आती। वो तीन बातें क्या है? अशुभ व व्यर्थ सोचना, अशुभ व व्यर्थ बोलना और अशुभ व व्यर्थ करना। सोचना, बोलना और करना। अभी विक्रम कम होती है लेकिन कम। व्यर्थ ज्यादा होते हिला देता है और पहले सोच में आता है, फिर बोल में आता है, फिर कर्म में आता है। और किसका रिजल्ट में देखा तो बोल और कर्म में नहीं आता है, लेकिन सोचने में बहुत आता। उसमें टाइम वेस्ट बहुत होता है, जो समय बनाने का है वो सोचने में बीत जाता है। तो बाप दादा आज तीन बातें सोचना, बोलना और करना, इनकी गिफ्ट सभी से देने चाहते। तैयार है त्या? तैयार है? सभी ने ये दे दिया, वापस नहीं लेना। ये नहीं कहना मुख से निकल गया न क्या करे। दृढ़ संकल्प का बटन लगा दो मुख पर। दृढ़ संकल्प का बटन तो है ना, क्यों बाप दादा को बच्चों से प्यार रहना तो प्यार की निशानी है। प्यार वाले की मेहनत देख नहीं सकते। बाप दादा तो उस समय यही सोचते के साकार में जाके इनको कुछ बोले, लेकिन अब तो आकार ही निराकार है। बिल्कुल सभी क्यों लेते हो?

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: पहले सोच रहे थे 99 में क्या होगा, हुआ कुछ हुआ, फरवरी तो आ गई, अगर होगा भी तो आपको क्या, आपको नुकसान है स्थित हो जाओ, प्रकृति का खेल देखते चलो, घबराना नहीं, आप अलौकिक हो, साधारण नहीं हो, साधारण लोग हलचल में आएंगे, घबराएंगे, अलौकिक मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माएं खेल देखते अपने विश्व कल्याण के कार्य में बिजी रहेंगे। अगर मन और बुद्धि को फ्री रखा तो घबराएंगे, मन और बुद्धि को लाइट हाउस हो, लाइट फैलाएंगे, इस कार्य में बिजी रहेंगे तो बिजी आत्मा को भय नहीं होगा, साखी बनो, और सदा अपने कोई भी हाल चलो उस समय अनुसार।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: जगत

Hijo de...

शिष्य में मनोवृत्ति

इसका साधन है।

sick.

किसी भी साथी सहयोगी के

उसे अतः

0: क्षमा करने का।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: Say

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

जुदा न थे न जुदा रहेंगे, विदा न होंगे न विदा कहेंगे। धरती गगन हो, मधुबन वतन हो, बाबा दादी संग सदा रहेंगे, बाबा दादी संग सदा रहेंगे। याद में बाबा के सदा मगन, ओ दादी आपका यही कथन, ओ दादी आपका यही कथन।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

家。

Dealer.

chaotic. अपने को लक्ष्य रख।

But not.

Apa?

0: चाय सेवा केंद्र चाय स्वयं कहाँ भी रहते हैं स्वयं को निर्विघ्न
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कभी स्वप्न में भी सोचा था कि ड्रामा में मुझे आत्मा का ऐसा भी भाग्य नोदा हुआ है, था और है।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: जिस भी बच्चे को देखे, जो भी मिले, संबंध संपर्क में आए, उन्हों को ये लक्षण दिखाई दे कि ये जैसे परमात्मा बाप ब्रह्मा बाप के कौन थे, कौन है वो बच्चों से दिखाई दे अनुभव करे कि इनके नैन इनके बोल इनके का वायुमंडल अनुभव में आए, इसको बाप दादा कहते हैं। बाप समान बनना।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: Yes.

Verti, Verti. Oh.

Verdis, warum? An

Ananga. Kyokan Unbox.

escúchenla. Yo solo quise invertir a ti. O sea,

इसकी और आवश्यकता क्योंकि अनुभव कभी भी भूलता नहीं किसी इस स्वरूप के

0: और शरद में भी बहुत मदद करते हैं। तो बाप दादा ने देखा, अनुभव की अथॉरिटी इस अनुभव के अथॉरिटी का अभ्यास के ऊपर और अटेंशन दो। अनुभव स्वरूप स्थिति सदा समाई हुई रहती है। उसकी शिकिल चलन
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आज बाप दादा व्यर्थ संकल्पों की समापति करने के लिए सभी चारों ओर के बच्चों हिम्मत दे रहे हैं कि अभी से व्यर्थ को समाप्त कर सदा समृद्ध बनाओ। सिर्फ संदेश नहीं, समृद्ध बनाओ, समृद्ध बनो, समृद्ध बनाओ। व्यर्थ को समापत्ति दिवस बनाओ। हो सकता है जो समझते हैं कि व्यर्थ संकल्प अपने को भी नुकसान पहुंचाते हैं, समय बर्बाद करते हैं, चेहरे पर सदा खुशनुमा खुशकिस्मत का अनुभव कम कराते हैं। इसलिए अब इस समापति का समय समीप लाना है। किसको? आपको ना, जो समझते हैं कि अभी समापति के समय को समीप लाना है, उसके लिए व्यर्थ को समाप्त करना ही है, करना है नहीं, करना ही है, स्वप्न में भी नहीं है। संकल्प तो छोड़ो, लेकिन स्वप्न में भी नहीं है। ऐसे हिम्मत वाले बच्चे जो अपने को समझते हैं वो हाथ उठाओ। मन का हाथ उठा रहे हो ना, पाए का हाथ तो बहुत ईजी है, लेकिन मन का हाथ उठा रहे हो। जो मन का हाथ उठा रही है वो हाथ उठाओ, मन का हाथ।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: सभी जो भी आए हैं बाप दादा को एक एक बच्चा कोई

0: sé qué decir. Mira, mamá. Islie. Pap, capi, a ti, Pierre. Sra, pap, tada. Ik, pat. Verse. Yad dilara ki apna chehra sada khushnima khushi mein chamakta rahe. Baatein chali jaye lekin khushi nahi. संगम योग की खुशी परमात्म गिफ्ट है तो होली अर्थात कोई ऐसी बातें आवे तो याद करना कि होली मना के आए जो होली बात होली खुशी नहीं जे परमात्म सौगात खजाना खुशी बाप दादा सदा कहते हैं ये स्लोगन सदा याद रहे खुश रहना है और खुशी बांटनी जितने बांटेंगे उतने बढ़ेंगे और खुश नेमा चेहरा चलते फिरते ऑटोमेटिक सेवा करता रहेगा जो भी देखेगा वो यही सोचेगा क्या मिले तो आज होली की दिल खुश सदा खाते रहना इसमें कोई बीमारी नहीं होगी अच्छा
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो शांति की धुन रहे जीवन में सदा

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सब ठीक आराम से रहे हुए हो, मन भी आराम में, धन भी आराम में, दोनों ही आराम है ना? है? आप मुस्कुराओ, सीरियस नहीं रहो।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: साइलेंस की शक्ति वाले

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: रात्रि के समय जब सोने जाओ तो चेक करना जो सोने के पहले ही दूसरे दिन के उमंग उत्साह को इमर्ज करके फिर सोना और सुबह को उठकर देखना कि किया हुआ संकल्प अभी भी मर्ज है या थोड़ा भी मर्ज हो गए। अगर मर्ज हो गया हो फिर
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: Shit.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सीट पर सेट हो जाओ।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: जैसे ब्रह्मा बाप को देखा

Mierda, mierda, mierda.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: What's up?

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आज बाप दादा ने देखा कि मेहनत क्यों करनी पड़ती, अनुभव स्वरूप बनने का नंबर वार पुरुषार्थ
2: किसी में भी चार में से

0: भी स्वभाव परिवर्तन के योग में भी अचल रहने की योगी जीवन की अनुभूति करने की जहां मेहनत है या कभी कभी कहते हो इसका अर्थ है उस सब्जेक्ट में आप अनुभवी मूर्त नहीं बने। अनुभव कभी कभी नहीं होता, नेचुरल नेचर होती। तो अभी सुना
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: एक सेकंड में चारों ओर हलचल है, सभी तत्व खूब हलचल मचा रहे हैं। एक तरफ भी हलचल से मुक्त नहीं है, व्यक्तियों की भी हलचल है, प्रकृति की भी हलचल है। ऐसे समय पर, इस सृष्टि पर तो चारों ओर हलचल है, तो आप क्या करेंगे? सेफ्टी का साधन कौन सा है? सेकंड में अपने को विदेही व अशरीरी some

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: देखिए

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

mata.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सभी पूछते हैं आगे क्या करना है, बाप दादा का संकल्प है कि अभी ज्यादा में ज्यादा बने बनाई स्टेज पर चांस लो और उनको सहयोगी बनाओ और आप सकाश दो। दूसरों का भाग्य बनाओ, भाग्य बनाने का चांस दो उनको। भाग्य बनाने के लिए सिर्फ स्वयं आज कौन सी दो, एक तो रहम दिल बहुत बनो, कृपया के बाप के साथी बनो, शक्तिशाली प्रति से वायुमंडल ऐसा बनाओ जो स्वयं ऑफर करे, ऐसे ऑफर चारों ओर आवे, हर जोन में ऑफर आवे, प्रसिद्ध हो जाएगा। अभी उनों का भी सहयोगी सनई बनने का चांस दो, उनों को भी चांस दो क्योंकि बाप दादा ने देखा है कि सनई सहयोगी हर जोन में यथाशक्ति है, लेकिन उनको सेवा के साथी बनाओ, उनों को भी उमंग उत्साह के पंख दो, है चारों ओर, क्योंकि बाप दादा चक्कर तो लगाते हैं ना, तो अपने बच्चों को भी सनई सहयोगी नजर में है, लेकिन चांस नहीं दिया है, प्रैक्टिकल चांस नहीं लिए, तो ये वर्ष तो वो भी आपको लेना देंगे कि आपको तो आपने बताया ही नहीं कि ऐसा भी कर सकती है।

0: चांस देने वाले। बनो,
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सबके अंदर खुशी का खजाना सदा ही चेहरे और चलन में दिखाई दे। खुशी अविनाशी पाप की देन, तो अविनाशी पाप की देन को अविनाशी रखो। खुशी के लिए कहा जाता है खुशी जैसी कोई खुराक नहीं, खुशी जैसा कोई खजाना नहीं। तो जिसके अंदर सदा खुशी है उनके नैनों से, चेहरे से, चलन से ऑटोमेटिक दिखाई देती। बाप दादा का वरदान है कि सदा खुश रहो और सदा खुशी बांटो, क्योंकि खुशी बांटने से खुशी बढ़ेगी और कोई भी खजाना बांटने से कम होता है। लेकिन खुशी का खजाना जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। तो चेक करो, खुशी का खजाना सदा कायम है।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: श्रेष्ठ रंग है

Nichts.

Yoga.

रहने से आपको कंबाइंड बनाने से

Peace.

नशा रहते हैं ना।

c'est pas votre.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: देखो, निश्चय का पर्तक्य परवान है, रूहानी नशा
0: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Yeah.

0: आती और विश्व के दुखों को परिवर्तन कर सदा खुश रहने का साधन सेवा में सदा उपस्थित रहते हो, सदा सेवादारी हो, सेवा सिर्फ 4 घंटा 6 घंटा करने वाले नहीं हो, हर सेकंड सेवा के स्टेज पर पार्ट बजाने वाले परमात्म साथी।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: चिल्लाना सहन नहीं होता।

साथ में करो कि चलते फिरते अमृत वेले आत्माओं की मनसा सेवा भी अवश्य करेंगे। ये संकल्प ले सकते हो जैसे ये संकल्प लिया तो संस्कार को समाप्त करेंगे सदा के लिए। सदा के लिए लिए है ना, थोड़े समय के लिए तो नहीं। तो जैसे संस्कार को समाप्त कर पाप समान बनेंगे ऐसे दाता के बच्चे बन मास्टर दाता स्वरूप से मनसा सेवा भी करनी है। सारे दिन में जो भी टाइम मिले उसमें मनसा सेवा जरूर करना, क्योंकि आप बच्चों को ही सुखमय संस्कार

सभी को मुक्त।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: संस्कार का वो मेरा है, है मेरा है, किसका है? ये तो कभी नहीं कहते हो कि ये रावण के संस्कार है, कहते हो मेरे संस्कार, तो ये मेरा शब्द ये ही जैसे सोना संभाल के या हीरा

0: dich bei dir. Mira Sanskar.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: What the?

0: saat masih sejepur syaratki setai prinamilti wo sejepur syaratka
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Bye.

Attention.

on.

Merci.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: राज।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आज के दिन सभी के दिल में आगे आने वाले वर्ष के
2: मुबारक हो।

बच्चे के लिए। क्या चाहता है?

some butter buns, yeah.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा का बॉम्बे और दिल्ली दोनों तरफ एक ऐसा सर्विस तो करते हो, वो तो कहने की बात नहीं, अच्छी कर रही है, करते रहेंगे, लेकिन बाप दादा दिल्ली और बॉम्बे से यही चाहते ऐसे कोई ग्रुप निकालो, क्योंकि लिस्ट सभी वर्गों ने मेजॉरिटी बाप दादा को भेजी थी। देखी है वो लिस्ट, अच्छे अच्छे है लिस्ट में, जो नाम पाला कर सकते।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: साधारण मैपन व रॉयल मैपन दोनों का समर्पण किया है, किया कि कर रही है, करना तो पड़ेंगे ही। आपस में हंसी में कहते हो ना, मरना तो पड़ेगा ही, लेकिन ये मरना भगवान की गोदी में जीना है, ये मरना मरना नहीं है। 21 जन्म देव आत्माओं के गोदी में जन्मना, इसलिए खुशी खुशी से समर्पित होते हो ना, चिल्ला के तो नहीं होते।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: ऐसे नाजुक समय में सकाश देंगे, जितनों को देंगे, चाहे बहुतों को चाहे थोड़ों को, उतने ही द्वापर और कलयुग के भगत बना रहे। योग दिया हुआ सुख और शांति उनके दिल में समा जाएगा।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: निकली लेकिन वो फाउंडेशन पवित्रता, स्वच्छ हो, साफ हो, और कोई भी भाव मिक्स नहीं हो। भाव में भी पवित्र

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: इससे अभी ऐसी अनुभूति शुरू करें। तफसा के अधिकार शुरू।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: जो भी बातें ऐसी आवे जो बेकार आने नहीं चाहिए, लेकिन आ जाती है क्योंकि पेपर तो होना है ना, तो क्या करेंगे अगर ऐसी कोई बात आवे तो बाप दादा को दे देना। देना आता है ना, लेना तो आता है, लेकिन देना भी आता है ना। छोटे बन जाना, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो क्या करते हैं, कोई भी चीज पसंद नहीं आती है तो क्या करते हैं, मम्मी ये आप संभालो। ऐसे ही छोटे बन के बाप को दे दो, फिर अगर आवे आएगी, बाप दादा ने देखा है कि बहुत समय रखी है ना, तो छोड़ने से भी फिर आती भी है, लेकिन अगर आवे भी तो यही सोचना कि दी हुई चीज यूज की जाती है क्या। देना अर्थात आपके पास आई तो अमानत आई, आपने तो दे दी ना तो आपकी रही नहीं। अमानत में खयानत नहीं करना चाहिए, आपको मदद मिलेगी तो ये मेरी नहीं है, ये अमानत मैंने दे दी, इसमें फायदा हो जाए क्योंकि समय कम है और पुरुषार्थ आपको तीव्र करना। जो भी आए है मेरा बाबा, तो जब मेरा बाबा कहा तो और कोई मेरा है क्या, बाबा ही मेरा है ना। तो बाप पर अधिकार रख करके अमानत समझ के बाप को दे दो, अपने पास आने नहीं देना।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

मिट्टी हो जाए सुट्टी, लेकिन पूरा नहीं होगा ना, तो भी क्रोध आते हैं। मानो आप जानते हो कि हमारा भी कॉन्फ्रेंस होती है, फंक्शन होती है, उसमें हमारा भी पार्ट होना चाहिए। आकर भी हम लोग को कब चांस मिले, और आपकी इच्छा है और आप इशारा भी करते हैं, लेकिन आप लोगों को चांस नहीं मिलता है। तो उस समय चिड़चिड़ा बना

उनकी वृद्धा व्यर्थ संकल्प चलेंगे चलेंगे ना, तो वो पवित्रता तो नहीं हुई ना। अब फर्क करना, विचार देना, इसके लिए छुट्टी है। उस विचार को इच्छा के रूप में बदले नहीं कर, जब संकल्प इच्छा के रूप में बदलता है तब चिड़चिड़ापन भी आता है। वह मुख से

0: तो स्पीड लगाने रखेंगे कि जरूर होना चाहिए, वो नहीं चाहिए नहीं, ठीक है आप फर्क किया। और आपके निस्वार्थ ऑफर जल्दी पहुंचेगी, स्वार्थ किया ऑफर या ईशान के वश ऑफर और क्रोध पैदा करें।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: प्यार के पीछे कुर्बान करना क्या बड़ी बात है, दुनिया वाले तो अशुद्ध प्यार के पीछे जीवन भी देने के लिए तैयार हो जाते। बाप दादा तो सब किचना कहते हैं, किचना दे दो बस, अच्छी चीज नहीं तो किचना दे दो। कमजोरी कमी क्या है, किचना है ना, किचना कुर्बान करना क्या बड़ी बात है। परिस्थिति समाप्त हो जाए, स्वस्थिति श्रेष्ठ हो जाए। बताते तो यही है ना, क्या करे, परिस्थिति ऐसी थी, परिस्थिति का नाम ही नहीं हुई लाने वाली। स्वस्थिति शक्तिशाली समापति का पर्दा खुले तो सब क्या दिखाई देवे, फरिश्ते चमक रहे, सभी बच्चे चमके हुए दिखाई दे। अभी इसीलिए पर्दा खुलना रुका हुआ है, चला रही है पर्दा खोलो पर्दा खोलो। अपना आप ही प्लान बनाओ, बना हुआ प्लान देते है ना तो फिर कई बातें होती है। अपना प्लान अपने हिम्मत से बनाओ, चाबी लगाओ तो सफलता मिलनी ही है। दृढ़ संकल्प करते हो और बाप दादा खुश होते हैं, वाह बच्चे वाह। दृढ़ संकल्प किया लेकिन दृढ़ता में फिर थोड़ा थोड़ा अलबेलापन मिक्स हो जाता है, इसीलिए सफलता भी कभी आती कभी बौनी परसेंटेज में हो जाती। जैसे प्यार 100% है वैसे पुरुषार्थ में संपन्नता ये भी 100% हो, ज्यादा भले हो कम नहीं हो, बनना ही है। हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा, ये निश्चय रखो। हम ही थे हम ही है और फिर भी हम ही होंगे, विजय बना दे।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम। सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: में लड़ती नहीं है, किट किट नहीं करती है।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: रश्मि।

0: dice Ortechalo.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कभी कभी लिफ्ता बन जाए, ये हो ये करे ये मदद दे ये बदले तो मैं बदलूं, ये बात ठीक हो तो मैं ठीक हूं। ये लेफ्टापन दातापन नहीं।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अभी फिर भी बाप दादा पहले से ही अटेंशन खिंचवा रहे हैं, कि अभी फिर भी
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: जब काम मिलता है तो लिखने में भी मार्क्स जमा होती, अगर नहीं लिखा तो मार्क्स एक्स्ट्रा कम हो गई, नुकसान कर दिया। जो भी डायरेक्शन मिलती है, चाहे डायरेक्ट बाप द्वारा मिलती है, चाहे चुराना नहीं चाहिए। बहुत ऐसी काजे हैं छोटी छोटी जिसको हाजी करने में एक्स्ट्रा मार्क्स जमा होती। कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो किसी भी पास्ट के संस्कार के वश बहुत अच्छे और मजबूत सामने पढ़ते हैं, लेकिन कोई न कोई बहुत महीन धागा उनको आगे बढ़ने नहीं देता। वो समझते भी है कि ये महीन धागा रहा हुआ है, लेकिन ऐसी भी पुरुषार्थी है जो छोटी छोटी कामन बातों में हाजी करने से मार्क्स ले लेते, और हो सकता है एक सैंपल के रूप में है।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: सेवा बहुत अच्छी करो, लेकिन सेवा और स्व दोनों कंबाइंड हो, जैसे
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: संगम योग की बाप दादा के कार्य की विशेषता या नवीनता बातें और अभी
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

hagan sin que yo del sin papá que tiene Cushy.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: Христи Панка, अनुभव कर रहे।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
0: सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

alle chiamiato. Papne gli atleta. Che capiamo.

Brazil.

Master Sarveshaktivan.

0: esa verdad.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: ये सब साधन आप बच्चों के सेवा के सहयोग के लिए निकले। माँ बाप जब समाचार सुनते हैं, ये ईमेल है, ये है, खुश होते हैं। वाह बच्चे वाह, इतना सहज साधन। ब्रह्मा बाप को भी साकार में नहीं मिला, लेकिन बच्चों के पास खुश होते। सब सेवा का साधन समझ के यूज करना, सेवा के लिए साधन, क्योंकि विश्व कल्याण करना है तो ये भी साधन सहयोग देते। साधनों के वश नहीं होना, लेकिन साधन को सेवा में यूज करना। ये बीच का समय है जिसमें साधन मिले। हाथ में भी कोई साधन नहीं थे इतने, और अंत में भी नहीं रहेंगे। ये अभी के लिए सेवा बढ़ाने के लिए, लेकिन साधन है साधना करने वाले आप। साधन के पीछे साधना कम नहीं हो। बाकी बाप दादा खुश होते हैं, सीन भी देखते हैं बच्चों के फटाफट कर रही है। बाप दादा आपके ऑफिस काफी चक्कर लगाते हैं, कैसे काम कर रहे हैं। बहुत बिजी रहती है, ये हंसती है। अच्छी तरह से ऑफिस चलती है ना। जैसे एक सेकंड में साधन यूज करते हो, ऐसे ही बीच बीच में कुछ समय साधना के बिना भी निकालो। अभी साधन

खुशी में कभी थकावट नहीं हो।
कम मिलती है, वेस्ट तो नहीं जाते हैं, लेकिन सोल कॉन्शियस की मार्क और एक्शन कॉन्शियस की मार्क में अंतर तो होगा ना कि नहीं होगा? होता है, फर्क होता है। तो अभी बैलेंस लिंक को नहीं तोड़ो, नहीं जोड़ते रहो। बाप दादा जानते हैं कि मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन बैलेंस जितना समय निकाल सको सेकंड निकालो, मिनट निकालो, निकालो सर। हो सकता है पांडा, हो सकता है टीचर्स, हो सकते हैं और जो ऑफिस में काम करती है वो, हो सकते हैं, हो सकता है

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

टीचर्स बताओ, हो सकता है 15 दिन तो कुछ भी नहीं है, लेकिन बाप दादा ट्रेल के लिए संकल्प भी वेस्ट नहीं। युद्ध नहीं विजय, फुल विजय मुश्किल है कि इजी है? इजी है, हाथ उठाओ, इजी है, इजी है। बाप दादा ये 15 दिन के रिजल्ट देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। 15 दिन तो कोई भी कर सकते हैं, कर सकती है ना। 80% लेना ही, फिर भी बाप दादा हल्का कर रहा है, 20% छोड़ रहा है।

0: Helados. Raelados. Yeta, yeta. Y raelados. A la vela pan.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: आपके सत्कर्मों की राहों पे हम चलते जाएंगे, आपके सत्कर्मों की राहों पे हम चलते जाएंगे, जब तक स्वर्णिम सवेरा आए, दीपक बन जलते जाएंगे, दीपक बन जलते जाएंगे। हम जानते हैं, हम जानते हैं आज भी कर रही हो यही रमन, हम जानते हैं आज भी कर रही हो यही रमन, आपके स्नेह और पालना को शत शत नमन, शत शत नमन।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अभी आप सभी भी अपना चित्र खींचो, आता है चित्र खींचने आता है।

सभी ड्रिल करो, माइंड ड्रिल, घर में इंद्रियों की ड्रिल नहीं, मन की ड्रिल करो। रेडी, ड्रिल करने के लिए रेडी है, कांधे लाओ। सबसे

रचना इस फिरके के जड़ में

Hepfe Carpaccio.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Love.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: साधारण अज्ञानी आत्मा को कितने रस्सियों से बंधा हुआ दिखाते हो, वो है अज्ञानी आत्मा के लिए लोहे की संजीर, मोटे मोटे बंधन है। लेकिन ज्ञानी तो आत्मा बच्चों की बहुत महीन और आकर्षण करने वाली लोहे के संजीर भी नहीं है जो दिखाई देते हैं। बहुत महीन भी है, रॉयल भी है, पर्सनालिटी फील करने वाले भी है।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

और आप अपने आप को देना।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: पियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कोई भी पतन में जाना न जाना अनुभव नहीं रहो, जाना है आवश्यक है तो शरीर भी साथ देगा, जो चाहते है उनको दे रहा है, आपको दे रहा है ना, मदद दे रहा है ना, जहाँ आवश्यकता है वहाँ मदद मिलेगी।
2: बहुत लोग का निमंत्रण होता है किसी को,
1: नहीं उसमें भी जब देखो हो सकता है तो ना नहीं करो, चल सकता है शरीर, कभी तो एकदम खराब होता है ना वो बात दूसरी, बाकी चल सकता है तो सेवा से खुशी होती, ये भी दवाई है, कितने खुश होते हैं तो सबकी खुशी की खुराक।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
3: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: आज बाप दादा ने देखा अमृत वेले चक्कर लगाया, चारों ओर का चक्कर लगाए, चाहे विदेश चाहे देश, बाप दादा को चक्कर लगाने में समय नहीं लगता। तो क्या देखा? Daddy.

This is what

0: 지.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: समय पर विजय प्राप्त करने के लिए मन में, बुद्धि में कैचिंग पावर और टचिंग पावर दोनों बहुत आवश्यक है। ऐसे सरकमस्टांस आने बैठे हो लेकिन क्लीन और क्लियर मन और बुद्धि होगा तो पाप का इशारा डायरेक्शन श्रीमद सकेंगे, टच होगा, ये करना है, ये नहीं करना है, इसीलिए बाप दादा ने पहले भी सुनाया है। तो वर्तमान सा

Ciao. Jesse, ciao. Fessi. ऐसा माइंड कंट्रोल चाहिए इसीलिए कहावत है मन जीते जगत जीत जैसे स्थूल ऐसे मन और बुद्धि की कंट्रोलिंग पावर आत्मा में हर समय इमर्ज हो ऐसे नहीं योग के समय।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

Stop.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: लेनी

0: reflexiva. ¿Qué más llama hoy?
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: साथ रहेंगे, माया का दरवाजा बंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कोई कैसा भी हो, स्वयं को चलने की विधि सीखो। कोई क्या भी करता हो, बार बार विघ्न रूप बन सामने आता हो, लेकिन ये विघ्नों में समय लगाना आखिर ये भी कब तक, इसकी भी समाप्ति समारोह तो होना है, दूसरे को नहीं देखना। ये ऐसे करता है, मुझे क्या करना है? अगर वो पहाड़ है, मुझे किनारा करना है, पहाड़ नहीं हटना है। ये बदले तो हम बदलेंगे, ये है पहाड़ हटे तो मैं आगे बढ़ूंगा, ना पहाड़ हटेगा ना आप मंजिल पर पहुंच सके। इसलिए अगर शुभ भावना है आत्मा के प्रति, तो इशारा दिया और मन बुद्धि से खाली खुद अपने को उस विघ्न स्वरूप बनने वाले के सोच विचार में नहीं डालू। जब नंबर वार है तो नंबर वार में स्टेज भी नंबर वार होनी है, लेकिन हमको नंबर वन बनना। ऐसे विघ्न व व्यर्थ संकल्प चलाने वाली आत्माओं के प्रति स्वयं परिवर्तन होकर उनके भावना रखते चलो। टाइम थोड़ा लगता है, मेहनत थोड़ी लगती है, लेकिन आखिर जो स्व परिवर्तन करता है विजय की माला उसी के गले में पड़ती है। शुभ भावना से अगर उसको परिवर्तन कर सकते हो तो करो, नहीं तो इशारा दो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म कर दो और स्व परिवर्तन कर आगे उड़ते चलो। ये विघ्न रूप भी सोने का लगाव का धागा है, ये भी उड़ने नहीं देगा। ये बहुत महीन और बहुत सत्यता के पर्दे का धागा है, यही सोचती है। सच्ची बात है ना, ये तो होता ही है ना, ये तो होना नहीं चाहिए ना, लेकिन कब तक देखते, कब तक रोकते रहेंगे? अब तो स्वयं को महीन धागों से भी मुक्त करो, मुक्ति वरश।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Yes.

बच्चों के मन में खुशी

0: 切，馒头饭，没啊那，阿达，不是。मधुबन में सेज सारा दिन क्या यात्रित बाबा बाबा बाबा बाबा सुनते हैं तो भी बाबा की बातें चल तो मधुबन का पावन स्थान खाते हैं तो ब्रह्मा भोजन पावरफुल क्योंकि यहाँ विशेष छुट्टी वालों को याद दिलाया जाता मधुबन में आना अर्थात अपने में ज्ञान योग धारणा और सेवा
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो सत्यम शिवम सुंदरम।